नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन

पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास

0: बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
2: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन है, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
1: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदी स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन,
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज के इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
2: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
1: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
3: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
1: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जनसेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
4: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपने दयनीय जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
1: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
5: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
6: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
5: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
6: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू।

0: बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
3: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
2: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा हो

0: सकता है डॉक्टरों के मन में।
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

फैसल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव की बोल थी, प्रीतम की दर्ज थी, पेपॉन की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेट्रो। इन दिनों इसी के साथ खत्म होता है आज का चित्रलोक कार्यक्रम।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में।

0: इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: आकाशवाणीचं हे अमरावती केंद्र आहे, FM बँड 101.5 मेगाहर्ट्सवर आणि प्रसार भारतीच्या न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर।
3: चटपटीत चमचमीत चवदार स्वाद ब्युटीफुल पदार्थ असो कुठलाही रुचकर बनवणार घरकुल।
4: घरकुल मसाले ज्यांच्या घरी वर्णावी त्यांची खवय्ये गिरी,
3: म्हणून जेवण हवं असेल ठसकेबाज घरकुल मसाले आणा आज।
5: हस्तियों का अनमोल खजाना,
6: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
5: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
6: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आ, आ, आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ, आ, आ होता है। और एक दिन मैं ये आ, आ, आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
5: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: जो किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मूर्तों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है।

गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हों या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियां दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।

गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता राय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता राय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थीं। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। सरल इतनी थी कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थी। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थी कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुँचाया करती थी और 1953 में गुरुदत्त और गीता राय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए, जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यहीं, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ के रखा है? यहाँ अच्छो अच्छो

0: छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
1: आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, मैं उसके लिए तैयार होकर आया।
0: देखो मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया और ना ही मैं तुम्हारे सुख बदला लेना चाहता हूं।
2: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
0: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
2: कोई नहीं।
0: सुनो, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फौरन छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
2: मुझसे कहे कि इतनी हमदर्दी, समझा?
0: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, वैसे ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

गीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग की खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा। तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है, साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में

0: और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमिय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
1: अबे तू जाता है कि नहीं? जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
1: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं और कल जब यही वक्त पलटेगा।
1: जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला। पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना। चल दफा हो यहाँ से।
0: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने।

0: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है, उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह उस सबके

परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज़ है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉर्ट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।

0: गुरुदत्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी फेशियल मालिश करेंगे और वो भी फुकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।
2: मारे, तेल मारे, तेल मारे, तेल मारे।

0: सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, लाए घबरा।
1: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा, सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
2: गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल के बेबसी पे तरस खा के पी गया, ठुकरा रहा था
3: अच्छा?
2: मुझको।
3: तो ये शायर भी है?
4: शायर
2: बड़े,
4: अरे तुम देखती रही, उसकी कुछ पांच से नज़मे उसके सर के पीछे पड़ी है।
2: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां।

फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।

आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दे, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है।

0: सेबी कडून इन्व्हेस्टर जागरूकता उपक्रम. अधिक माहितीसाठी सेबी इन्व्हेस्टर वेबसाइट वर विजिट करा किंवा सेबी सारथी ऍप डाउनलोड करा.
1: फूल खिलते है बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवा होता है. दिल की बातों को होठों से कहते हैं, पर एक दूसरों की मन की बातें भी तो रेडियो से ही सुनवाई और सुनी जाती.

श्रोते कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। तो आज का हमारा सफर उन पंछियों के नाम है जो मौसम के साथ हजारों मील की यात्रा करते हैं, है ना, नए आसमान, नई दिशाएं और मंजिल की तलाश करते हैं। तो इनकी उड़ान हमें भी कुछ सोचने का मौका देती है, संदेश देती है। तो आइए पंखों के साथ कल्पनाओं को भी हम उड़ान दें और सुने आज का ये सुरीला सफर। चलिए पहले आज की इबारत पढ़ देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आसमान में पंछियों का एक झुंड

हजारों मील दूर की यात्रा पर निकला है, ना उनके हाथ में कोई नक्शा है, ना रास्ते में कोई मील का पत्थर, फिर भी प्रकृति की अदृश्य दिशा को पहचानते हुए वो आगे बढ़ते हैं। मौसम बदलता है, हवाएं बदलती हैं, धरती के रंग बदलते हैं, लेकिन उनकी यात्रा जारी रहती है। इन प्रवासी पंछियों को देखकर एक सवाल मन में उठता है, क्या सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नाम है, या सफर अपने भीतर कुछ नया खोजने का नाम भी है? हम इंसान भी तो ऐसे ही मुसाफिर हैं। कभी रोजगार हमें घर से दूर ले जाता है, कभी रिश्ते, कभी जिम्मेदारियां, और कभी अपने सपने। हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी उड़ान भरते हैं जहां मंजिलों का पता तो होता है, लेकिन रास्तों की मुश्किलों का अंदाजा नहीं होता। तो प्रवासी पंछी हम सभी को बात सिखाते हैं, दूर जाना पर अपनी जड़ों को भूलना नहीं। मौसम अनुकूल होने पर ही लौटते हैं अपने लिए परिचित ठिकानों की ओर। शायद इसीलिए उनकी उड़ान में केवल बिछुआ नहीं होता, लौटने की उम्मीद भी छिपी होती है। जब इन पंछियों को देखकर हमारा मन भी उड़ान भरता है, तो संगीत उस उड़ान को आवाज दे देता है ना? तो आइए आज सूर्या सफर में पंखों की सरसराहट सुने, खुले आसमान का विस्तार महसूस करें, और उन गीतों के साथ उड़ चलें जो हमें याद दिलाते हैं कि आसमान सिर्फ पंछियों के लिए नहीं, सपने देखने वालों के लिए भी खुला है।

0: आंगन में।
1: लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चोरी चोरी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये साल में एक दिन दो बार 9 मई और साल में ये दिन दो बार 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर प्रवास करते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों, उनके संरक्षण और उनके आवास स्थलों को बचाने के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पक्षी दिवस और बहुत बढ़िया थीम लेकर आप आई है, और आज सुरीला सफर में पक्षियों के साथ हम भी नीले अंबर में सुरीले मधुर गीतों के साथ सैर करेंगे। बिल्कुल। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा मन भी कभी कभी उड़ान भरता है, यादों के पंख लगाकर बीते हुए दिनों में पहुंच जाता है, संगीत की धुनों के साथ अनजानी राहों पर निकल जाता है और सपनों के आसमान में विचरने लगता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, मन की उड़ान कभी थमती नहीं। आखिर पंछी हो या इंसान, उड़ान ही तो जीवन को नए अर्थ देती है और अपनी जड़ों की ओर लौटने का सुख उस उड़ान को पूर्णता देता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सुंदर सी इबारत में इसमें प्रवासी पक्षियों की उड़ान, जीवन का सफर, अपनों से बिछड़ना, अपनी जड़ों की ओर लौटना और सपनों को पाने की चाह है। मेरे मायके के नजदीक सांभर झील में सर्दियों में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, फरवरी मार्च तक रुकते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रास्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और परिस्थितियां भी, पर उम्मीद का साथ नहीं छूटना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पिंजरे में पक्षी कमजोर हो जाता है, वही जब उसे आजाद कर दे तो वो आसमान को छू लेता है। शायद पिंजरे में बंद पक्षी हमें ही कहता है, जो भी मैं मांगू क्या मुझको दे पाओगे? कैद में पंछी पूछ रहा, क्या खुला गगन दे पाओगे? जब बेड़ियां तुम्हें पसंद नहीं, फिर मुझको क्यों पकड़ा है? अपने स्वार्थ की खातिर मुझे क्यों पिंजरे में जकड़ा है? बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है। बहुत सुंदर। आई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल, सुबीर सेन की आवाज और फिल्म का नाम है आस का पंछी। अच्छा बताइए, क्या आपने कोई पंछी पाला है? बताइएगा।

0: होगा आसमां को बढ़कर, नहीं तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल मेरा एक आस का पंछी, यानी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार थे। वहीं एक श्रोता लिख रही है कि पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक ऐसा सदाबहार गीत है जो आज भी श्रोताओं को ऊर्जा और खुशी से भर देता है, और ये गीत आजादी, उल्लास और बेफिक्री का एक खूबसूरत प्रतीक है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते है कि एक गाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, जीवन जीने और रोजगार की तलाश में अपनी उड़ान भरता है और सफल होता है, यही हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिख रही है कि मेरे पतिदेव ने भी मुझे आजाद होकर उड़ने की इजाजत दी है, क्योंकि मैं भी अपना बिजनेस करती हूं और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इसी तरह हर एक को अपने जीवन साथी को आजादी देनी चाहिए, जो सही आजादी होती है उसे देना चाहिए, ताकि अपनी उड़ान हर इंसान भर सके। वहीं बहुत सारे श्रोताओं ने आज के इस गीत को पसंद किया है और लिखते हैं कि बात सही है, लेकिन जब सेवा में कार्यरत थे तब घर की और ऑफिस की जिम्मेदारी के कारण मस्त गगन में उड़ने का मौका कम मिला। अब जब सेवानिवृत्त होने के बाद नौकरी से आजाद हुए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उड़ने का मन जरूर होता है, लेकिन पंख सिकोड़कर बैठ जाना पड़ता है, फिर भी मन को मजबूत बनाकर जरूर उड़ा जा सकता है। इस बात पर एक मुहावरा इन्होंने लिखा है, मन होए तो मालवे जवाई। ये गुजराती मुहावरा है, मतलब मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। रूबरू न सही विविध भारती के प्रसारण तरंग रूपी पंख लगाकर। बहुत सुंदर लिखा है, अपनी छोटी बहन यानी मैं के संग जब सुरीली उड़ान भरेंगे तब मेरे मन का बावरा पंछी बार बार जरूर डोलने लगेगा। बिल्कुल, इस वक्त आप मेरे साथ ही हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना? महसूस किया आपने? जी हाँ, हम अभी हवा में उड़ ही रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। अरे, इससे पहले तो गाना आपसे सवाल पूछना था, चलिए सवाल पूछती हूँ। हाँ, एक सवाल तो मैंने लगे हाथों पूछ ही लिया था यूं ही कि आपने कोई पंछी पाला है तो बताइए। हाँ, जो मेरे दो सवाल हमेशा रहते हैं, वो पहला सवाल ये है कि अगर आपको किसी भी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बताइए कहाँ जाना चाहेंगे उड़कर। और अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो ये भी

बता दीजिएगा कि क्यों क्यों जाना चाहेंगे वहां। सवाल फिर से नोट कर लीजिए, अगर आपको भी किसी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? और हमारा दूसरा सवाल है कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, है ना, लेकिन क्या इंसान अपने मन में जो खींची हुई सीमाएं हैं उन्हें पार कर पाता है या नहीं? आपने अपने जीवन में अपने मन में जो सीमाएं पाल ली है, सीमा रेखा खींच दी है, उसे आप पार कर पाते हैं कभी? बताइएगा। तो सवालों के जवाब का हम इंतजार करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।

हमारे श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब लिखा है। लिखते हैं कि हमें अगर उड़ने का मौका मिला तो हम यूरोप जाना चाहेंगे। अच्छा क्यों, ये तो आपने नहीं बताया, ये भी बताइए क्यों जाना चाहेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि अगर हमको कभी उड़ने का मौका मिले तो मैं दूर से ये देखना चाहूंगा कि मेरी इस सफलता से कितने लोग खुश है और कितने दुखी। अरे आप फिर भी वो जो मानव का स्वभाव है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, आप ये देखना पसंद करेंगे कि भाई मैं उड़ रहा हूँ तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दुखी है मेरे इस उड़ान से। नहीं नहीं, आपको सिर्फ उड़ान भरनी है और निकल जाना है दूर, बहुत दूर, तभी तो मजा है उस उड़ान का, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रभात पे पक्षियों की मधुर कलरव की मीठी मधुर आवाज से गगन पर विहार करते सुनाई देती है तो मीठी नींद से जागाती है। मैं हाल सूरत पर हूँ, पर एक साल में 3 बार राजस्थान के हिंडौन सिटी के ग्रामीण इलाके में करीब 5 महीने रहा हूँ। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गाँव में रहा। खेत खलिहानों में मोर मोरनिया पक्षी बहुत

खाते हैं, हम दाना पानी मीठी नमकीन चना बिछा कर रखते हैं, तो कुछ देर बाद वो आते हैं, अपने आप मन हो तब दाना रोटी नमकीन खाते हैं, और हम उन पक्षियों को खाते हुए मधुर आवाजों से करीबी से सुनते भी हैं, और मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा समय निकालते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि बिहार में सर्दियों के दौरान साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज के देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, और इनके ठहरने के लिए बिहार में कई प्रमुख आर्द्रभूमि झीलें और पक्षी अभयारण्य है। और आपने लिखा है जमुई जिला झाझा, ये बिहार का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल है, जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ साइबेरिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। उदयपुर झील जहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है, राजगीर की पहाड़ियां, नालंदा जिला, राजगीर की पहाड़ियों और जंगल के यूरोप और मध्य एशिया से कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। और पटना पुराना सचिवालय के पास जो है जलाशय, पटना शहर के भीतर स्थित इस जलाशय में ठंड के मौसम में विदेशी और प्रवासी पक्षी मेहमान के तौर पर आते हैं। और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में जो है, यहाँ मध्य एशिया से विभिन्न प्रकार की बतखें और सारस प्रवास के लिए आते हैं। नागी नकटी जमुई, भीम बांध और पटना, इन प्रवासी पक्षियों को देखना बड़ा ही सुंदर और मनोरम लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है, जब एक साथ छुट्टियां होती हैं और एक्स्ट्रा छुट्टियां लेकर सब परिवार तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हम जाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा मन ही पंछी ही तो है जो सतत आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाना चाहता है। बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मन बिना टिकट बिना किसी साधन के हजारों मीलों का सफर करेंगे सुरीले सफर के साथ। बिल्कुल, आज हम टिकट लेकर नहीं उड़ रहे हैं बल्कि बिना टिकट के इस यात्रा पर निकल चुके हैं, है ना? आप भी महसूस कर रहे हैं ना इस हवाई यात्रा को?

ये आवाजें थी आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था 9-2-11। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी में बहुत सी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि खुले आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले विविध भारती का मुंबई और दिल्ली का जो विविध भारती स्टूडियो

0: सीखने की उड़ान वो भरेंगे। क्या बात है। वही एक श्रोता ने अपनी बात रखी है लेकिन कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। आप लिखते हैं कि थाईलैंड राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान में पंछियों के साथ 2 घंटे, बस इतना ही आपने लिखा है। शायद आप ये कहना चाहते हैं वहां पर आपने 2 घंटे बिताए, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि 1968 में 6ठी क्लास में पढ़ते हुए जंगल से तोते का बच्चा लेकर आए। अभी उसके पंख भी नहीं आए थे, रुई के फाये से दूध पानी चोंच में डालकर उसको बड़ा किया और एक मराठी भाषी मित्र को दिया। उसने उसे मराठी सिखा दी। इकड़े आला कोठे जला, अच्छी मराठी बोलता था तोता। मैं बाहर चला गया, उनका भी तबादला हो गया और बाद में पता नहीं कि किसको दिया तोता। 20 साल बाद एक गली में उसकी आवाज पहचान दी और मराठी में बात की तो उसने भी जवाब देकर पहचान पूरी कर ली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सच बताऊं मैंने भी ऐसे ही एक तोता मैना पाले और तोता उड़ गया एक दिन। अब मैना उदास हो गई, मैंने फिर उसको भी उड़ा दिया। मुझे लगा कि शायद इतने दिन मेरे साथ रहे हैं तो वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन पंछियों से प्यार करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिल लगा बैठते हैं और फिर उनके उड़ान भरने के बाद हमें दुख भी होता है और शायद कई दिन तक ये दुख रहा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो जहां सपनों की उड़ान देखनी है उस यथार्थ को प्रवासी पंछियों की उड़ान जैसा दिखाया गया है, जो बड़ा लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक पहुंचते हैं और फिर अपने जन्म स्थान को मौसम अनुकूल होने के बाद लौट जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रवासी पंछियों का आवागमन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ज्ञान या विवेक किताबों या विद्यालयों तक सीमित नहीं है। प्रवासी पक्षी प्रकृति के नियमों के साथ पूरी तरह तालमेल से रहते हैं। ये हवा के रुख, हवा में उपस्थित गंध, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांड में सितारों की स्थिति को बिना किसी कंपास के समझ लेते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण यह है कि पंछी प्रकृति से अलग हटकर नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बनकर जीते हैं। यहाँ ऋतु से आशय ब्रह्मांड की वो प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। पक्षियों का ये एक निश्चित समय पर उड़ान भरना और बिना रास्ता भटके नियत स्थान पर पहुंचकर प्रवास काल को पूर्ण कर वापस लौटा इसी ऋतु का प्रमाण है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत, मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते गाना भी नहीं याद आता है, लेकिन शायद मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो उड़ान भरिए ना, मन की उड़ान को भला किसने रोका है। आइए मन की
1: संदेश नाईक राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या, परकीय शक्तींच्या पाठिंब्यानं घटनात्मक संस्था कमकुवत करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचा केंद्रीय मंत्र्यांचा आरोप। मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांची दिल्लीत धरपकड। संरक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बहुराष्ट्रीय तरंग शक्ती सरावाला प्रारंभ आणि रशियाकडून डिझेलच्या आयातीवरचे निर्बंध अमेरिकेनं शिथिल केले। परकीय शक्तींच्या पाठिंब्यानं घटनात्मक संस्था कमकुवत करण्याचा आणि नागरिकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास तोडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केला आहे। दिल्लीत विरोधी पक्ष आणि इतर संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनासंदर्भात ते वार्ताहरांशी बोलत होते। देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याची टीका भाजपाचे अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी केली। भारताची लोकशाही ही अतिशय बळकट असून हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी देशवासी एकत्र येतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला। मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर मंतरवरच्या आंदोलन करण्यासाठी निघालेल्या अनेक आंदोलक आणि राजकीय नेत्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे। काँग्रेस जनता पार्टीचे अभिजित दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना विमानातूनच ताब्यात घेतलं, तसंच युट्यूबर ध्रुव राठीला त्याच्या घरातून ताब्यात घेण्यात आलं। सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि प्रशासनिक कारणांसाठी पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती। स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटनेच्या 400 पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांनाही तसंच काही आंदोलक वकिलांनाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे। या प्रकरणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हस्तक्षेप करून ताब्यात घेतलेल्या वकिलांना सोडून द्यायच्या सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत। जंतर मंतरच्या बाहेर प्रचंड मोठा पोलीस बंदोबस्त आहे। संपूर्ण दिल्लीत पोलीस आणि निमलष्करी दलांचे जवळपास 25,000 कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत। 45 मेट्रो स्थानकांमध्ये प्रवेश करण्यावर आणि बाहेर पडण्यावर निर्बंध लावले आहेत। दिल्लीच्या सीमा रेल्वे स्थानक, बस स्थानकांसह इतर संवेदनशील ठिकाणांवर टेहळणी वाढवण्यात आली आहे। जंतर मंतरच्या 4 किलोमीटर परिसरात इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद आहेत, तसंच दिल्लीला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे गाड्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत। दरम्यान दिल्लीत आकाशवाणी भवन

0: innovate, strengthen our capability and explore new frontiers, aerospace and defense cooperation. And let us ensure that the power we build is ultimately used in the service of peace, security and stability.
1: राजनाथ सिंह यांनी आधुनिक लढाऊ विमानांची प्रभावी हवाई प्रात्यक्षिक पाहिली आणि स्वदेशी तसंच परदेशी लढाऊ विमानांचं प्रदर्शनही पाहिलं. 26 सप्टेंबर ते 12 ऑक्टोबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या या सर्वांचा उद्देश सहभागी हवाई दलांमधील कार्यात्मक सहकार्य, परस्पर कार्यक्षमता आणि परस्पर सामंजस्य बळकट करणं हा आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमधल्या शारजा बंदरात काल झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर पनामाचा ध्वज असलेल्या कच्च्या तेलाच्या टँकरवर कार्यरत असलेले सर्व 22 भारतीय खलाशी सुरक्षित असल्याचं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितलं आहे. संबंधित अधिकारी जहाज व्यवस्थापन कंपनीच्या संपर्कात आहेत असं सोनोवाल यांनी समाज माध्यमांवर म्हटलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सिंगापूरचे राष्ट्रपती थर्मन षणमुगरत्नम आणि प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉंग यांच्याबरोबर आज द्विपक्षीय चर्चा केली. भारत आणि सिंगापूर यांच्यातली समावेशक सामरिक भागीदारी पुढे नेण्यावर आणि द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यावर या बैठकीत चर्चा झाल्याचं अर्थ मंत्रालयानं म्हटलं आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं रशियाकडून खरेदी केलेल्या डिझेलच्या विक्री आणि आयातीवरचे निर्बंध 7 एप्रिल 2027 पर्यंत शिथिल केले आहेत. युक्रेननं रशियाच्या इंधन शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले चढवल्यामुळे डिझेलच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्यानं मॉस्कोला डिझेलच्या निर्यातीवर निर्बंध लादावे लागले होते. त्यानंतर इराणचं समर्थन असलेल्या येमेनच्या सशस्त्र दलांनी सौदी अरेबियावर केलेल्या हल्ल्यांमुळे इंधन पुरवठ्यावर आणखी मर्यादा आल्या होत्या. मात्र रशियानं येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणावर डिझेलचा पुरवठा करायला मान्यता दिल्याबद्दल ट्रम्प यांनी रशियाच्या अध्यक्षांचे आभार मानले आहेत. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात तिसरा T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना इंदोर इथं उद्या संध्याकाळी 7 वाजता होणार आहे. 5 सामन्यांच्या मालिकेतल्या आतापर्यंत झालेल्या 2 सामन्यात भारत आणि वेस्ट इंडिजनं प्रत्येकी 1 विजय मिळवत बरोबरी साधली आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. परकीय शक्तींच्या पाठिंब्यानं घटनात्मक संस्था कमकुवत करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचा केंद्रीय मंत्र्यांचा आरोप. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांची दिल्लीत धरपकड. संरक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बहुराष्ट्रीय तरंग शक्ती सरावाला प्रारंभ आणि रशियाकडून डिझेलच्या आयातीवरचे निर्बंध अमेरिकेनं शिथिल केले. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया 3 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात. नमस्कार.
2: आज खुले आसमान तले पंछियों की तरह उड़ान भरने वाले मानव के मन की उड़ान के आकलन की भी बात होगी. इसके अतिरिक्त उड़ान की दिशा और दशा की तुलना भी पंछियों की उड़ान से भली भांति तरीके से की जाएगी. अब देखना यह है कि आज हम लोग किस तरह से समूचे 1 घंटे के लिए अपनी उड़ान के साथ उड़ते हुए जीवन की उड़ान में सफल होते हैं. बहुत सुंदर. देखिए, मन की उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं. इस 1 घंटे में तो क्या हम पूरे दिन शायद कहीं ना कहीं हमारा मन उड़ता ही है. लेकिन हाँ, ये 1 घंटा जो सुरीला सफर आज हमने मन की उड़ान को दिया है, पंछियों की उड़ान को दिया है, उसमें हम बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं. सफर कर सकते हैं आप, है ना? बताइएगा, कर रहे हैं कि नहीं. मैं एक शोधा लिखते हैं कि प्रवासी पक्षी मीलों सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं मौसम के अनुसार और फिर वापस लौट आते हैं. हम भी कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार. बहुत अच्छा. वही एक शोधा लिखते हैं कि मन की उड़ान का मतलब हुआ कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, असीमित सोचने की क्षमता. जब हम रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव, जिम्मेदारियों और बंधनों से थक जाते हैं तब हमारा मन एक नई ऊर्जा की तलाश में उड़ान भरता है. ये उड़ान कभी पुरानी खूबसूरत यादों की गलियों में होती है तो कभी आने वाले कल के हसीन सपनों में. और एक लेखक की कलम, एक चित्रकार के रंग और एक वैज्ञानिक की खोज सब मन की इस उड़ान का परिणाम है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब आपने लिखा है. आपकी जो अंतिम लाइन है उसने हमारा मन जीत लिया है. वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान भी पंछियों की तरह जीवन भर सफर ही करता रहता है क्योंकि इंसान को भी सही दिशा का ज्ञान नहीं होता. जीवन के सफर में हमारे द्वारा किया गया कर्मों के अनुसार एक अदृश्य शक्ति पक्षियों की तरह हमसे भी पहुंचा देती है. अच्छा, आपने कुछ लिखा है पंछी बनी उड़ती फिरू, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम अपने कर्मों के अनुसार उड़ान भरते हैं. वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंछी तो मैंने पहले एक तोता पाला था जो एक बार पिंजरा खुला उड़ गया और उसके बाद मेरे पास अभी एक कछुआ है जिसकी मैं अच्छे तरीके से देखभाल करता हूँ. वैसे मुझे पक्षी पसंद है और मैं रोज उन्हें दाना भी डालता हूँ. बहुत अच्छी बात है. एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं तो मोर का टहू का

देता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आसमान में पंछियों का झुंड लाइन में उड़ता देखकर मन को बड़ा आनंद आता है। आसमान में छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हैं, चहकती हैं, दाना खाती हैं, तो देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि जी नहीं, मैंने आज कोई पंछी को पिंजरे में आज तक किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, पाप लगता है। बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में मैंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है, जहां बहुत से फ्लावर लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, और सुबह सुबह जो है रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियाएं आती हैं, उनकी आवाज सुनना बहुत पसंद होता है, दिल खुश हो जाता है उनको देखकर और उनकी आवाज सुनकर। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी चिड़ियों को पालने का बहुत शौक है, मेरी बेटी को अच्छा चिड़िया पालने का बहुत शौक है, कई बार लेकर एक उड़ गई और फिर एक मर भी गई, फिर बहुत दुख हुआ, इसलिए अब हम नहीं लाने देती हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए अब मैं होना चाहिए ना, नहीं लाने देती हूँ। पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे दिखते हैं, न कि पिंजरे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब कोई पंछी हम पालते हैं या अपने आसपास देखते हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो दृश्य बहुत बहुत बहुत खतरनाक होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ऐसी कल्पना करके भी। और आज हमारी कल्पना बहुत सुखद है, ये विषय बड़ा अजीब है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरे घर में एक तोता था, नानी ने पाला था, ससुराल में तो पूरा कबूतरों का झुंडी पाला हुआ था। अच्छा, पर पंछियों को पालना नहीं चाहिए। अभी मेरे फ्लैट के ऊपर एक परिवार तोता रखे हुए था। सुबह सुबह जब अपनी मधुर मीठी आवाज में मम्मी मम्मी बोलता है, तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा बुला रहा है और मन खुश हो जाता है। कभी कभी वो धीरे से डांटती है तो चुप हो जाता है, पूछता है क्या बात है, तो इस बात को रिपीट भी करता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंछी हमारा मन बहलाते हैं, लेकिन जब वो कैद में होते हैं तो उनका ही मन जानता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम हरे कांच की चूड़ियां। शब्दकार हैं शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपने अपनी जो सीमा रेखाएं बना रखी हैं मन में, उन सीमाओं को कभी आपने तोड़ा है?

तो हम हमारे दो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि अगर आपको भी किसी पंछी की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है? सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं तो। हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण इबारत पढ़कर मन उड़ान भरने की चाहत रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चंचल मन भी पंछी की तरह होता है, अभी अभी धरती पर होता है और देखते ही देखते आसमान में उड़ जाता है। मन जब उड़ान भरता है तब जमीन की बंदिशों को पीछे छोड़कर कल्पना आजादी और नए क्षितिज की तलाश में खो जाता है। अंबर को छूने, बीता कल भुलाने और बादलों के संग आंख में चोली खेलने की चाहत में मन पूरी तरह बेफिक्र और आनंदित होता है। आनंद आज आपकी बातें और गीतों से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इबारत लिखी है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक परिपोषण, वंश संरक्षण, उत्तरदायित्व निर्वहन, प्राकृतिक सामंजस्य संग समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सुंदर है, इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये, सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी जमीन उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेटकर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आंखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था सेहरा, शब्दकार हसरत जयपुरी थे और तर्ज राम लाल की थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछली सर्दियों में अपनी छत पर कई वर्षों से दाना पानी बारह मास रखता हूँ। पिछली सर्दियों में एक फाख्ता के जोड़े ने अंडे दिए, पर उनका बनाया हुआ घोंसला बराबर स्थान नहीं बना था, जिससे उनके घोंसले के तिनके गिर जाया करते थे। फिर मैंने वो स्थान बराबर किया और उनका घोंसला ठीक किया, उस पर एक गर्म कपड़ा बिछाया और उस पर अंडे रख दिए। तब से अभी तक फाख्ते वहीं पर अंडे देते हैं और अभी भी दो अंडे रखे हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर काम किया, बहुत बड़ा काम किया आपने। आपने उनके घर को बनाया जो बार बार टूट जाता था, बहुत बड़ा काम है ये। और अब हमारी उड़ान कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुकी है, जहां हम चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाभी का ये गीत।

तो दोस्तों, आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है, उनका संरक्षण और उनकी जो प्राकृतिक आवास है, उन्हें बचाने का प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना, ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है, इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दी इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: which build an ecosystem in sports from the grassroots level to empower sportspersons to gain global excellence. Prime Minister Narendra Modi in his speech from the Red Fort said the government is committed to enhance sports ecosystem.
1: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है. स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं.
0: With 85 medals in the recently concluded Asian Games, India finished fourth with a spectacular performance. Target Olympic podium top national sports policy which align with the national education policy. Fit India movement, there are several initiatives by the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
2: India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir for the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police makes elaborate security arrangements amidst call for protest at Jantar Mantar, detain some individuals planning to participate, rail and metro services partly affected in national capital. BJP accuses opposition of weakening constitutional institutions and breaking people's faith in democracy. Defence Minister Rajnath Singh says India is closely monitoring neighbourhood and global security developments, reiterates armed forces are undergoing major transformation under Atmanirbhar Bharat vision. India slams Pakistan at UN General Assembly for spreading lies and falsehoods about Jammu and Kashmir. And IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया. राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित. भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है. उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान. अब समाचार विस्तार से. नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं. नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जाँच की जा रही है.
4: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं. किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे.
3: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है.
5: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहाँ पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए.
3: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे. एक रिपोर्ट.
6: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है. वहीं सुरक्षा कारणों से

0: आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
2: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
3: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।

0: सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
1: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्ध विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
4: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
3: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज

0: बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। फिल्म पाकीज़ा, शुरुआत कर रहे हैं इसी गाने से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आखिरी दांव फिल्म का ये गाना। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें।

0: मोरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनके जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। अनुराधा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल रविशंकर का संगीत है।

0: क्लासिक, एक उत्तम जीवन।
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
1: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना। रचना थी साहिर लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाग, लक्ष्मीबाई वाग, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यसुदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवबर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है वाशीनाथ, ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर तेजश्री कामले अब अपने रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक हैं दीना नाथ।

0: नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री HP शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक Mrs. शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट तक पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 उठते रहे, स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त में से शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती है जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी से
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से

0: पहले या ऐन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है?
1: सिर्फ तीन किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों की खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेराफेरियां करते हैं।
0: चुनांचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री H.P. शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गईं। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थीं कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
2: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है, अरे देखो ना बाहर जाके के कौन है, तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे हाय, लगता है चले। अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ, ऐसी भी क्या उतार रही हूँ। आप कैसे घर चले आए इस वक्त, तब तो ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ।
1: नहीं।
2: अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही है ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
1: नहीं नहीं।
2: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं? आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। आज सुबह सुबह मेरी आँख भी फड़क रही थी, बताइए ना क्या हुआ है?
1: क्या बताऊँ?
2: अच्छा अच्छा, ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
1: नहीं।
2: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
1: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
2: क्या?
1: ट्रांसफर।
2: ट्रांसफर आपकी?
1: हाँ, आज सुबह 10:29 पर ये मनहूस खबर मुझे
2: मिली। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया,
1: क्या बताऊं लाजवंती। खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते खिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
2: किस्मत फूट गई, हमारी किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय राम, हाय, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
1: आगरा।
2: आगरा। हाय राम। हाय, क्या हो गया लाजवंती बहन?
3: पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
2: हाय, कौन तो बहन?
3: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
2: दिल्ली में था कि बाहर? नहीं बहन, ये बात नहीं, आए जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
3: हौसला रखो बहन, हौसला रखो। अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
2: आए

0: जानू ने लंबी आयु दे, सब ठीक है।
1: बहन फिर हुआ क्या?
0: अरे किस्मत फूट गई हमारी तो किस्मत।
2: भाई साहब की नौकरी?
0: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं, आए क्या बताऊं, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
2: अनर्थ?
0: अनर्थ, आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
1: हाय राम,
2: सबर करो बहन, धीरज रखो।
3: हालात बनती
0: किसे मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस या घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
1: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
0: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
1: बस बस बहन उठो, देखो पानी वानी पियो। भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान करा। मन को शांत रखो बहन और इसका कोई उपाय सोचो।
0: ठीक तो कहती हो बहन,
2: तुम कोई फिक्र ना करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाए दी।
0: नहीं नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
2: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।
1: हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
2: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
3: लाजवंती, क्या सोच रही हो लाजवंती?
0: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो जरा जरा उनसे पूछिए तो।
3: ना जाने कौन,
0: किस कंबख्त ने दिया है ये ऑर्डर।
3: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
0: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ।
3: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
4: अम्मा खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
5: पिताजी आप
3: कृष्ण, तुम
5: इस वक्त यहाँ?
3: इस वक्त यहाँ?
5: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आप आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं, बात क्या है?
0: क्या बताऊं बेटे,
5: हुआ क्या है कुछ बताइए तो।
3: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
5: ओ, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
3: किसने, किस पर?
5: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
3: क्या बक रहे हो तुम, कैसे जालिम हुक्मरान, कहाँ के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक
5: हैं। ये सब धोखा है, आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
3: बेशक।
5: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
3: रजा, रजा।
5: अब हाँ हाँ, वही वही मतलब है, जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 उनकी खदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए इनकलाब, इनकलाब।
3: तुम नहीं जानते मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
5: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
3: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
5: वो खाना जो 25 तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
3: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक, दिमाग चल गया तुम्हारा?
5: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील, एस द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर बाई सी आए।

0: सकता है पिताजी, उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। यह ट्रांसफर उन्हीं विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश है। दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट
1: बेवकूफ पागल गधे, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा।
2: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
0: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर। गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
1: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
2: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
0: I'm sorry daddy, मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
1: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली।
2: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ, आप जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
1: करना क्या है, क्या हो सकता है? उन्हीं बड़ी बलवान है लाजो, और इंसान बहुत कमजोर।
0: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आपको कुछ करना चाहिए।
2: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
1: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
0: कल से स्ट्राइक?
1: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
3: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
1: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
3: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही
4: मामी मामी। पिताजी आप पाप रहे?
1: कौन?
4: मैं कोई नहीं।
1: कौन? लाजवंती? अरे उषा ही है क्या?
4: उषा? हाँ, नहीं।
1: तो कौन घुसा है अभी घर में?
4: उषा।
1: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है, ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
4: ओ, ओ, किसे कोस रहे हैं?
1: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है?
4: ओ, ओ, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
1: बुलाओ उसे।
4: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
1: हे भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता। विनय लौटा है कॉलेज से?
4: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
1: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
4: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
1: हौसला रखो लालवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा। विनय।
5: जी पिताजी।
1: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
5: इफ यू डोंट माइंड पिता, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
1: कैसा सवाल?
5: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
1: विनय,
5: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
1: खबर आज ही आई है।
5: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
1: तुम्हारा मतलब क्या है?
5: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
1: ऑर्डर? ऑर्डर? ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये कोई मेरे हाथ की बात है?
5: पिताजी आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
1: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
5: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगे हुई है? सब कहेंगे आगे के पावर खाने में जा रहे हैं।
1: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
5: डोंट माइंड पिताजी।

0: एक बात मैं साफ बताई देता हूं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
1: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
0: कैसे जा सकता हूं, यहां मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
1: तुम्हारा सोशल सर्कल?
0: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूंगा।
1: क्या तू यहाँ हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा कौन देगा?
0: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
1: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ?
0: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
1: और मेरे इस घर बार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे?
0: मैं घर के साथ चिपका रहा हूँ या अपना फ्यूचर देखूं?

0: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ।
1: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
0: और मेरे इस घर बार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे?
1: मैं घर के साथ चिपका रहा हूँ या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वेलू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहां से वहां, वहां से यहां शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहां पर बात करते रहेंगे पिताजी?
0: मेरे साथ अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हे भगवान, मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से।
2: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
1: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं? अम्मा मैं क्या बताऊं? मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
0: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे रहना रह ले। बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहाँ रह सकता है रह ले।
2: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? हाय राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बाहर उजड़ जाएगा।
1: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं ना जाने क्या क्या कह गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
3: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूं? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूं और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूं।
1: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
3: हाँ, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
4: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
5: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी जी, चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, कैश जमा करवाना है।
6: लंच के बाद आना।
5: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है
6: तो जनाब। फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
5: लेकिन जनाब वक्त तो अभी भी है।
6: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
7: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
5: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
6: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
7: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती
6: है। हाँ चलो चलो चलो,
8: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
7: नमस्कार बड़े बाबू जी।
6: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
8: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
7: फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि बड़े बहू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
6: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
8: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
7: कितने चाय?
8: यही 4-5, और 4-5 प्लेट बढ़ेगी।
7: अब पैसे
8: ये ले, मैं देता
6: हूं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता बड़े बाबू,
7: ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता।
8: एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
7: नहीं, नहीं, नहीं, चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
8: ले ले ये ले 10 करोड़ और लपक के ले आ जा।
1: मेरी राय में तो बड़े बाबू सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
8: मगर वो क्या कर सकता है?
7: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाई?
6: सही बात,
7: सही है ना?
8: सही बात। अच्छा तो फिर पहले मैं करमारकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
1: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमारकर साहब के लिए।
8: हाँ सो तो है,
6: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गए ट्रांसफर। क्यों भाई?
7: बिल्कुल
1: सही बात,
8: बिल्कुल सही बात,
7: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ही मिल लीजिए,
8: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत?
8: अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास। क्यों भाई?
1: बिल्कुल ठीक बात है।
8: तो ठीक है, मैं आज ही करमारकर साहब से मिल लेता हूँ।
4: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमारकर साहब के पास।
9: मे आई कम इन सर?
10: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया?
9: सर आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
10: हाँ हाँ बोलो।
9: सर वो बात ये थी कि
4: आपने इतना कुछ किया कर

0: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब, आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब के लिए।
1: सर आपको याद होगा जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
2: हाँ याद है।
1: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
2: याद है बरोबर।
1: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
2: बरोबर।
1: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
2: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
1: आपको सब कुछ याद है?
2: Of course.
1: अगर सचमुच अपने सारे करियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
2: बोलो बोलो क्या काम है?
1: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
2: मालूम जरूर है पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
1: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
2: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
1: बेशक सर बेशक आप रुकवा सकते हैं,
2: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
1: कहीं से भी आया हो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर
2: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
1: सर मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
1: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
2: क्यों?
1: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं। और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। जरा सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर।
2: ओ आई सी।
1: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर।
2: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है। अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
1: आपकी नाल न गड़ी होगी ना सर वहां पर। फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
2: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
1: नाल सर वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ बिलिकल कॉर्ड।
2: अच्छा कभी देखा नहीं।
1: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
2: ओ आई सी।
1: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
2: कहाँ?
1: वो घर के आंगन में सर।
2: लोधी रोड के क्वार्टर में?
1: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
2: ओ वो तो 10-12 मील होगा।
1: यस सर।
2: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हैं?
1: ओह आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
2: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
1: सर है तो दिल्ली ना।
2: यस यू आर राइट।
1: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
2: हम रुकवा सकते हैं?
1: यस सर आप रुकवा सकते हैं।
2: ओके हम रुकवा देंगे।
1: थैंक यू सर।
2: नो व्हाई थैंक मी, इट इज माय ड्यूटी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं अब चलता हूँ।
2: ओके
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
2: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा।
1: बस सर आप एक डीओ लिख दीजिए, ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
2: इज दैट ऑल?
1: यस सर।
2: ओके हम लिख देंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ सर।
2: अच्छा बट लिसन।
1: यस सर।
2: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। यू नो भाई ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
1: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है, शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीज नहीं किया जा सकता।
2: हाँ हाँ ये ठीक है।
1: थैंक यू सर।
2: अच्छा अच्छा
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: पर मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
2: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं, भाई स्टाफ टैंक वही रहेगी ना।
1: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
2: सुनो नालगढ़ी मेंशन कर दे।
1: नो नो सर वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
2: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
2: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
1: वो तो सर
2: कोई बात नहीं,

0: हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है। जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा।
1: ओके सर,
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर,
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।
2: प्लास्टिक की घास। श्रोताओं, आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहें कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्टर्स का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
1: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ?
2: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
1: जी।
2: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं। और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उससे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
1: जी।
2: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीजन से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में, वहाँ रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी, मणिरत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे, VCR पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना, ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके, ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहां से आई थिंक वो सीड हो गई थी। और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की, फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तो अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी मैं जूनियर रेसिडेंट था।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में, और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा। और फिर चलता रहा 1.5 साल, बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है। तो मैंने आके मेरे मम्मी और पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ, इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
1: तो गौतम जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया?
2: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
1: जी,
2: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके

0: फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं
1: जी
0: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में, कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था। आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था, शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था। तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया, हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए। वहाँ से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला, मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे। तो हमने गुजरात अर्थक्वेक में भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहाँ से मेरी जर्नी, वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा अभी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की। तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे। हाँ,
1: अच्छा
0: तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा 1.5 साल मैंने काम किया उधर, और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है। और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके। उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगने, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप
0: मतलब
1: उनके
0: मेरा
1: पीछे?
0: लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब DVD हुआ करती थी, तो एक DVD लाइब्रेरी थी बम्बई के एक इलाका है बैंड्रा, और वहाँ का जो ओनर था DVD लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे छगन भाई, तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था। तो मैंने बोला कि छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहां और वो आए, और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। और वहां से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ जो असिस्ट करना चाहता हूँ, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो के तुम असिस्ट करना चाहते हो।
1: जी
0: बोला हाँ अब मैंने छोड़ दिया मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके, वहां से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर
0: हाँ
1: जाना है, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया,
0: हाँ
1: और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से
0: नहीं
1: शुरुआ या
0: मतलब
1: कैसे शुरुआ असिस्टेंट डायरेक्टर का?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता,
1: जी
0: जो बड़े डायरेक्टर है रेड 1 रेड 2 आमिर नो वन किल जैसे
1: जी
0: के, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख कि तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि 4 या 5-6 AD होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा, ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है
1: जी
0: जो एकदम स्पेसिफिक है वो तब नहीं था कि 4-5 AD सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम में कंटिन्यूटी लिखता था,
1: जी
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है।
1: जी
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है, तब मुझे समझा अच्छा देर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को, तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो 1-2 जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा
0: तो ऐसे मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू।

0: जी, तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे।
1: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम।
0: जी
1: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है,
0: जी
1: जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर, NSD, FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है। तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते हैं, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए, उसमें से हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं, वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो। उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और
0: जी
1: लोगों को ऑडिशन करते हैं, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
0: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट
1: हाँ
0: बैठेगा, और देन आप आगे लेके जाते हैं।
1: या
0: गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
1: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी
0: चलिए
1: बहुत पसंद है।
0: जी, सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको वो ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ
0: जी।
1: हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका

0: इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा
1: जी,
0: वो लॉक हो गया।
1: तो ऐसे मुश्किल मौके
0: ऐसे भी कभी कभी होता है
1: जी।
0: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द फोर कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये चार जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
1: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट, आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
0: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते हैं समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो, क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहे विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करे, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजिशन, एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
1: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं ये
0: हाँ,
1: तो प्रोसेस
0: ऐसे
1: किया?
0: भी थे एक्टर्स, एक एक्टर है, दो चार साल पहले मैंने उसके साथ तीन चार बार काम किया है, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए।
1: हाँ।
0: तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
0: हाँ,
1: अगर
0: बिल्कुल।
1: हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्की का पार्ट है
1: जी,
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना है करके, बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्ढा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्की,
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार के, हम जैसा कह रहे थे,
0: ऐसा
1: लगता है वो ही उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा और उसने मना कर दिया, मान लीजिए उस एक्टर ने। फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम।
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है।
0: जी
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के।
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था। हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 months कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए। वो मैं अनमोल आहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं, हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो। लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहां। आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया।
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे। बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे। काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो।
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता
1: हाँ
0: रहे हैं। और
1: और
0: पूरा
1: टाइम बहुत कम था।
0: जी, अगर सेक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है।
1: मैंने सीजन 2 की थी, सीजन 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था।
0: जी, पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं कुछ फर्क नहीं होता है। ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो,
0: जी
1: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं। जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। कर पाते हैं इवेंचुअली बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है, बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
0: और आपकी ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो तो कभी
1: हाँ,
0: ऐसा लगता है कि ये इस रोल
1: मैं
0: में फिट
1: कोशिश करता
0: बैठेगा?
1: हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूँ। क्या है क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगिनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो, बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने।
0: जी
1: तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
0: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी
1: हाँ,
0: और
1: और
0: उसके
1: फिर
0: बाद ही
1: एज एन
0: करना?
1: एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
0: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब
1: हाँ,
0: चीजें
1: ताकि
0: जुड़े।
1: जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।

0: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है उनकी कास्टिंग पहले होती है, फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं जिनके तीन चार सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं,
0: जी
1: तब टर्शरी होते हैं एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो एक 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, क्राउड फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग, एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है, डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी उस
1: हाँ
0: तरह के लोग दिखने वाले एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है कैसी कद काठी ये तो देखते ही हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इंपॉर्टेंट थिंग।

0: है कि अगर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर।
1: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से
0: हाँ,
1: वो,
0: वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
1: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं कि जब इस मीडियम में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
0: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं तो वो नोटिस में आता है। जो भी ज्यादा फिल्में देखता है, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
1: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे
0: हाँ,
1: हैं
0: जान
1: तो
0: जाते
1: आप
0: हो कि
1: सारी
0: अरे
1: चीजें देख
0: यहाँ
1: रहे हैं।
0: ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
1: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
0: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है, जो मुझे लगता है कि मेरे में थी, इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था। बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, बट देर इज एन इंस्टिंक्ट।
1: हाँ, मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा और उस तरह से आपको एक अंदाजा।
0: हाँ, वो होता ही है। मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके,
1: जी
0: और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
1: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिल लेते हैं,
0: हाँ, जब
1: मिले।
0: भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है,
1: जी
0: सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो, तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे, या बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इसीलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहाँ ज्वाइन करो। एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे, आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है, जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉयट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, ये सीन दे देंगे, और बाद में जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है, कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन।
1: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो
0: हाँ
1: वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
0: हाँ और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे, वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है बॉम्बे में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज, तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
1: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है, उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
0: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए, और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक कोई एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म
0: हाँ
1: से।
0: हाँ ब्लैक फ्राइडे ने सारा

0: कुछ भी, मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना।
1: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते हैं।

0: ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: देखिए
0: तरह से
1: जैसे
0: आपने?
1: आप और काम करते जाते हैं आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें मिलके, प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूँ।

0: कि एक्टर्स को कि अपने आप को विजिबल रखो।
1: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए।
0: कोशिश जारी रखिए, अगर आप अच्छे एक्टर हो आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
1: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
0: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, टीआरपीज या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उन्हें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें, उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ। और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते हैं उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा, जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
1: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से?
0: हाँ, वो डेली सिक्स का रहमान का रहना तू,
1: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद पर।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो
0: जी
1: एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर को, एनएसडी के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए,
0: जी
1: जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001 दो तीन से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं। तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब
1: तो
0: अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही अपने
1: हाँ, वो
0: एक
1: पता नहीं क्यों, बट मैं

0: अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर मुंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए
1: अपने रील्स या ऐसे अपना काम आगे बढ़ाते हैं।
0: ह्यूमर कुछ भी, जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए। कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा।
1: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
0: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा। घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली, तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में। बट मैंने ऐसे भी देखा कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
1: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
0: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में। बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर। ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है,
1: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
0: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
1: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
0: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहाँ हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है। अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है, कौन है, सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए, रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में है तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी।
0: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं।
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
0: चूज करते बुला सकते हैं फॉर एन ऑडिशन।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो

0: कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो
1: हाँ
0: उसमें भी जो भी सब कास्ट है हमको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं। तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी
1: वो नहीं,
0: वैसा नहीं किया?
1: हम आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कैपेबिलिटी अगर आपको पता हो कि एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स हैं। इवन दो दोनों दिल्ली की हैं बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों।
0: अपने किरदार को पकड़ने के लिए
1: हाँ,
0: अच्छी तरह से।
1: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
0: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
1: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी।

0: अपने किरदार को पकड़ने के लिए अच्छी तरह से
1: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे, तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
0: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
1: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजंस को कास्ट करे, बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग और फंडिंग इज वेरी डिफरेंट, तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजंस, हेंस दिस वाज डन।
0: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा, फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों की हमें ये नहीं चाहिए?
1: एक बार हुआ था एक फिल्म में, मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है, मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था, और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते इसको कास्ट, लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता है लाइट्स का, तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया, बट नॉट टू हिज एबिलिटी, फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में, लेकिन ये हुआ था। उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
0: जी,
1: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी, ऐसे रॉक लो मत या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
0: कोई बिना ट्रेनिंग के वो
1: बिना
0: आए।
1: दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहाँ के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता,
0: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है।
1: हाँ वो गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
0: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
1: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहाँ जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता
0: हूँ। बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
1: हाँ मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
0: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे बाद
1: पहले,
0: के लिए छोड़?
1: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
0: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने डायरेक्शन तो आपने कहा।
1: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी।
0: अच्छा,
1: तो घनचक्कर थी 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था, फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई, फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं, और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की, मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
0: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
1: जिंदगी कैसी है बहेली।
0: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्टर्स के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए। ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़िए, फिल्मों की किताब पढ़िए, फिल्म मेकिंग की किताब पढ़िए, एक्टिंग की किताब पढ़िए, कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस, आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए।
2: अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और

0: सेबीकडून इन्व्हेस्टर जागरूकता उपक्रम. अधिक माहितीसाठी सेबी इन्व्हेस्टर वेबसाइट वर व्हिजिट करा किंवा सेबी सारथी ऍप डाउनलोड करा.
1: सीपीग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम.
2: ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल. सीपीग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है
1: और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है. सीपीग्राम्स संवेदनशील असरदार जवाबदेह. आज ही लॉगिन करें सीपीग्राम्स.

की मासूम चाहतों में क्या कुछ किए जाते हैं हम, लिखते हैं तेरा नाम कभी कभी छुपाते हैं हम। दिल की बातों को कह पाना कहाँ आसान रहा, लिखने लगूं तो शब्द भी पढ़ते हैं कम। जो कहना था तुमसे मिलकर हमें, वो जज्बात कागज में कहाँ समाएंगे। कभी मिलो जो ख्वाबों में तुम, हर वो बात तुम्हें बताएंगे।

मिली जो प्यार की पहली पाती, हुए मेरे पैर हवा अब। कभी उड़ती हूँ यहाँ, कभी उड़ती हूँ वहाँ, कदमों ने मेरे छू लिया जैसे आसमां। न होश खुद का, न खबर जमाने की, कहने लगी सखियां।

छाया गीत। भेज तो दिया दिल का पैगाम उन्हें, न जाने क्या लिखा इस दिले नादान ने। अब घबराते हैं अरमान, डरते हैं खुदा जान उन्हें। प्रेम में नाराजगी न मिले कहीं अंजाम हमें। ये प्रेम की बातें लिखना कहाँ आसान रहा, जब तक न मिले जवाब उनका, दिल रहे परेशान मेरा।

आया है खत तो देंगे जवाब भी हम, कैसे कह दें किसी अनजान से अपने दिल की ये बात हम। कहनी तो थी उनसे लाखों बातें दिल की, मगर किसी और से कहते वो बातें झुकती हैं शर्म से नजर। लिखा था मेरे सांवरिया ने, जानते हैं वो मेरे दिल की हर बात, लिखा सलाम छुपाए हैं उसमें ही दिल के सारे जज्बात।

लिख तो दिया था सलाम खत में छुपा कर दिल के जज्बात, वो क्या समझेंगे मेरे विरह की ये रात, क्या जान जाएंगे मेरी उलझी लटों की उलझने, मिलेंगी आंखों की कोर में छुपी उनके इंतजार की वो रात, न जाने कब आएंगे साजन इस गली, उनके बिना न दिन भले लगे न लगी भली रात।

हम सुन रहे थे ये गीत परिणीता फिल्म से, जिसे गाया सुनिधि चौहान ने। स्वानंद किरकिरे इसके गीतकार हैं और शांतनु मोशा ने इसे संगीत दिया है।

0: हम सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में यह गीत, जिसके गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं अनु मलिक और फिल्म का नाम है जाने मन। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं खूबसूरत फिल्म से यह गीत। आशा भोसले अशोक कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के हैं बोल और संगीत है RD वर्मन का।

आज कार्यक्रम तराने नए पुराने में हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा को भी। और चलिए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म उमराव जान से आशा भोसले की आवाज है, गीतकार हैं शहरयार और संगीतकार हैं खयाम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आज है अभिनेत्री रेखा का जन्मदिवस, तो आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माई गई फिल्म सिलसिला का यह गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया है शिवहरी ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, अब हम सुनेंगे समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई

0: जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। ये पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे, प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांची दिल्लीत धरपकड। महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयानं

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने।

0: हम सुन रहे थे ये गीत कहो ना प्यार है फिल्म से, लकी अली और राम्या की आवाजों में। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे।

0: विविध भारती पर। वो बताएंगे फिल्म के शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनके जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में मिस्टर नटवर लाल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज है दिनांक 10 अक्टूबर 2026, दिन है शनिवार। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोका के अंतर्गत। हम सुनेंगे शाम 6:45 पर संगीत

सरिता, श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इसका 10वां भाग आज हम सुनेंगे। आमंत्रित कलाकार, गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन। संपादन सहयोग संवादिका है ममता सिंह और प्रस्तुति अनुषेप पाठक की। 7 बजे का समय होगा विशेष जयमाला का, जो कि केंद्रित होगी, जो कि जिसमें साथ देंगी संगीतकार उषा खन्ना। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष, रात 8 बजे सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। कंचन, इसका हम 2वां भाग आज सुन सकेंगे। सुनो कहानी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी। वाचन ममता सिंह, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। आठ बजकर 15 मिनट पर सुनेंगे चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित होगा अभिनेत्री रेखा पर। रात 10 बजे का समय होगा छाया गीत का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11 बजे से सुनेंगे मैटनी शो। 11:00 झरोखा के अगली प्रस्तुति की तरफ, जिसमें हम सुनेंगे कल यानी 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 6:05 का समय होगा वंदन वार का और 6:35 पर सुनेंगे श्री रामचरितमानस का 338वां भाग। सुबह 6:45 पर एवं रात्रि में 6:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता, श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इसका 11वां भाग हम कल सुन सकेंगे। आमंत्रित कलाकार, गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह और प्रस्तुति अनुषी पाठक की। 7 बजे का समय होगा भूले बिस्तरे गीत का और 7:30 पर सुनेंगे हम हैं राही प्यार के। 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर सुनेंगे त्रिवेणी, जिसकी प्रस्तुत करता है अनुषी पाठक। 8:30 पर सुनेंगे चित्रलोक, सुबह के 9:30 एवं रात्रि के 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित होगा अभिनेता अमिताभ बच्चन पर, प्रस्तुतिकर्ता शकील बख्शी। 10:00 का समय होगा पिटारे का और सुनेंगे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज, गौतम कृष्ण चंदानी कास्टिंग डायरेक्टर से नेहा शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति तेजश्री कामले। 11:00 सुनेंगे सुबह 11:00 सुनेंगे विविधा सृजन भारती काव्य तरंग, हिंदी पखवाड़े पर विशेष कवि गोष्ठी, प्रतिभागी सुभाष कावरा, देवमणि पांडे, आशाकरण शर्मा और दमयंती दीपा। 12:05 का समय होगा यादों की महफिल का और 1 बजे सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। 2 बजे का समय होगा त्रिवेणी का, 2:15 पर सुनेंगे समाचार और 2:30 पर होंगे सदाबहार नगमे। 3 बजे मनचाहे गीत और 3:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम नाट्य तरंग, प्लास्टिक की घास, इसका 2वां भाग हम कल सुन सकेंगे। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। 4 बजे का समय होगा उजाले उनकी यादों के, संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का 4वां भाग, प्रस्तुति अनुषी पाठक। 5 बजे सुनेंगे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, शाम 6:35 का समय होगा संध्या रंजन का, 6:45 पर सुनेंगे संगीत सरिता और 7 बजे होगी विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा, प्रस्तुति तेजश्री कामले की, प्रस्तुति होगी महावीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजित।

चित्रलोक रात 8:15 पर, रात 10 बजे छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात, उसके बाद होगी विविधा।

हम सुन रहे हैं कार्यक्रम संध्या रंजन और हम सुन रहे थे ये भजन हम दोनों फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं साहिर और संगीतकार हैं जयदेव।

हम सुन रहे थे ये गीत बहजू बावरा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल और संगीत दिया नौशाद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन में अगला गीत, जो कि है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। शेखर सेन जैसे महान गायक, साधक, संगीतकार हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। शेखर दादा, एक बार फिर से आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार, और सभी श्रोता वृंद को हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। और आज मैं चाह रहा हूं एक अद्भुत रचना के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करना।
1: जी।
2: ये कालखंड था 1961 का।
1: जी।
2: और उस समय भारत वर्ष के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी कि हमने चीन से अपना युद्ध हारा था। और मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई अतीव दुख हो, बहुत अधिक दुख जिसका कोई उपचार न हो,
1: जी जी,
2: तो उसमें कहीं पर कोई संगीत, कोई गीत, कोई प्रार्थना ही एक फाहे की तरह उसको धीरे से सहलाती है, ताकि हम अपना दर्द भूल सकें।
1: बिल्कुल, औषधि का काम करती है।
2: बिल्कुल। और इसी समय जो फिल्म एक आई थी, उस फिल्म का एक गीत आपको सुना रहा हूँ, जिसमें बहुत ही विद्वान गुणी संगीतकार जयदेव जी ने संगीत दिया था।
1: जी जी।
2: और गाया था लता मंगेशकर जी ने। आप जब ये रचना सुनेंगे तो आप स्वयं साथ में गाने लगेंगे, लेकिन इस रचना को सुनाने के पहले मेरा एक आग्रह है।
1: जी जी।
2: आप में से जो संगीत के विद्यार्थी हैं, वो उसको इस दृष्टि से सुने कि ये शायद उन बहुत ही बिरले गानों में से है जहाँ स्थाई और अंतरे की धुन एक ही है।
1: जी।
2: लेकिन सा बदल गया है। स्थाई जो है वो सा से है, और वही धुन, वही नोटेशन अगर आप म से गाएं तो वो अंतरा बन जाता है।
1: जी जी।
2: तो मैं आपको पहले गा के सुनाता हूँ, तो आपको रचना याद आ जाएगी।
1: जी।

0: अब मैं स्थाई में अंतरा गा सकता हूँ, अंतरे की धुन में स्थाई गा सकता हूँ,
1: क्या बात,
0: क्योंकि नोटेशन वही है, केवल सा से अगर वो नोटेशन गाया जाए तो स्थाई है, मध्यम से गाया जाए तो अंतरा है।
1: जी।
0: और ऐसी रचना के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे आदरणीय जयदेव जी के उस महान प्रतिभावान संगीतकार की प्रतिभा को नमन करें, और लता जी ने इसको जिस ढंग से गाया है
1: जी।
0: वो तो खैर अद्वितीय है, अतुलनीय है
1: जी।
0: मैं चाहूंगा श्रोता आनंद लें, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम।

0: हम दोनों फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में हमारे श्रोता सुन रहे थे। शेखर दादा, अब इस गाने के बाद आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनवाएंगे?
1: मैं अभी तक तो आपको शब्द सुना रहा था, स्वर सुना रहा था जी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शब्द सुनाऊं।
0: जी जी जी।
1: क्या? और 600 वर्ष पहले सिख पंथ के जो प्रवर्तक थे आदरणीय गुरु नानक देव जी, उन्होंने एक विलक्षण परंपरा को जन्म दिया था। उस कालखंड में अगर आप देखें तो उत्तर भारत में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने संगीत के माध्यम से उपासना की पद्धति शुरू की, जो हमारे यहाँ हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और पूर्व में देखें तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन गा रहे थे और गवा रहे थे, पर पंजाब में गुरु नानक देव जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी थे, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की। और उन्होंने इसको कहा कि केवल मेरे या मेरे शिष्यों के या मेरी परंपरा को मानने वाले ही नहीं
0: जी जी,
1: बल्कि अन्य संतों की रचनाओं को भी हम संकलित करें
0: जी।
1: और एक गुरु ग्रंथ साहब के रूप में उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है ग्रंथ साहब, वही प्रकाश स्तंभ की तरह सिख संप्रदाय को दिशा निर्देश देता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी अद्भुत परंपरा उन्होंने चालू की। और अगर आप कभी देखने का आपको अवसर मिले गुरु ग्रंथ साहब, तो हर एक शब्द के ऊपर
0: जी
1: उसके राग का नाम लिखा हुआ है कि किस राग में उसको गाना है।
0: बहुत बढ़िया जानकारी।
1: तो ये एक बड़ी अद्भुत परंपरा

0: कि संगीत के साथ, प्रार्थना के साथ और आध्यात्मिक शब्दावली के साथ उन्होंने जोड़ा और उन्होंने कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो शब्द है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है।
1: जी, क्या बात।
0: तो उसके बाद जो खालसा पंथ की शुरुआत होती है वो उसके काफी दिनों बाद, वो 1699 में जो दसवें गुरु थे
1: जी, जी।
0: गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने फिर खालसा पंथ की स्थापना की। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपने ही स्वर में सुना रहा हूं। वैसे तो आपको मिल जाएंगे गुरु ग्रंथ साहब से या शब्द, बहुत अच्छे अच्छे गायक हमारे देश में हैं, पर मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि गुरु नानक देव जी की बानी गाने का मुझे अवसर
1: मिले। और हम नहीं लोभ संवरण कर पा रहे हैं कि हम बार बार आपसे अनुरोध करते रहे, तो जरूर गाएं दादा।
0: ये मेरी माँ की स्वर रचना है, शब्द गुरु नानक देव जी के।
1: जी, अनीता सेन जी।
0: जी, जी।

0: क्या बात है, अद्भुत रचना आपने सुनाई और अद्भुत स्वर में आपने समा बांधा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब हमें लगता है कि इस कड़ी को यहीं पर समेटना होगा। श्रोताओं से लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: श्रोते हो, आपण ऐकत होतात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। या कार्यक्रमाचे सादर करते होते रोशन जाधव। ही आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। नमस्कार।

तमिल के पुल और संगीत ए आर रहमान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक में अगला गीत, जिसे गाया है अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब शबरी और साथियों ने। इसे लिखा है इशात कामिल ने और संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। ये गीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो से है।

0: सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: जो भी हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
3: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
2: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
3: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
2: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: अब सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए लेते एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक में यह गीत जो कि है फिल्म दिलवाले से। इसे गाया है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने। इसके साथ ही इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
3: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
2: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक में ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत फना फिल्म से, शान और कैलाश खेर ने से गाया, प्रसून जोशी ने इसे बोल दिए और संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने। कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार,
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता

0: के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूक का पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहे हैं। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद

0: प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
2: स्वाभाविक है, लोकतंत्र होना भी चाहिए,
1: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में

0: आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
2: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
1: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
3: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
1: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
4: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और 2 अविवाहित बेटियां हैं।

0: आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
1: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमेरिकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वो बताएंगे फिल्म के शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनके जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है आपके लिए। आइए सुनते हैं अगला गीत मेरे अपने फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में।

0: तो इंसान ही ना पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है।

हम सुन रहे थे ये गीत कल आज और कल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हसरत जयपुरी के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और कार्यक्रम आपके लिए समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: हाँ दोस्तों, आज बात ही कुछ ऐसी है जिसका हम ढोल डुग्गी नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में अमरकांत के साथ आप सुनेंगे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेखा के फनकारी के किस्से कारनामे।
1: अरे वाह, क्या कठोर है मेरी, जरा बताओ तो।

0: जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का चर्चा सारी दुनिया करती है। रेखा को अभिनय प्रतिभा विरासत में मिली। 1966 में एक दक्षिण भारतीय फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया और हिंदी फिल्मों में भी उन्हें बहुत ही कम उम्र में ब्रेक मिल गया। जी हाँ, 1970 में बनी फिल्म थी सावन भादो।
1: कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा, पुर्जा लगे 85 झटके, हो तेरा रंग है।

0: में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: इस फिल्म के संगीत ने जहां एक तरफ बहुत धूम मचाई वहीं रेखा को भी चर्चा के घेरे में ला खड़ा किया। चर्चा उनकी बेबाक अदाकारी की हुई और दूसरी तरफ फिल्मी पंडितों ने रेखा को देखकर यहां तक कह डाला ये क्या चलेगी। लेकिन दोस्तों रेखा ने आने वाले वक्त में अपनी मेहनत और लगन से अपने आलोचकों को ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें भी कहना पड़ा

ये खूबसूरत शोला ऐसा चमका कि उसकी चमक के आगे सितारे भी शर्मा जाएं। रेखा की बेहतरीन अदाकारी तो आप कई फिल्मों में देख ही चुके हैं, उनकी अदाकारी का एक और अलग रंग हमारे सामने आया जब हमने देखी उमराव जान।

0: जी हाँ, मस्तानों और अफसानों से घिरी रेखा हमेशा मीडिया के लिए एक हॉट केक की तरह ही रही। विषय चाहे उनका फिजिकल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक्टिंग हो या किस्सा किसी रोमांस का, मीडिया ने हमेशा उन्हें अपनी पत्रिकाओं के फ्रंट पेज पर ही रखा।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात,

यूं तो रेखा ने तकरीबन सभी नायकों के साथ काम किया है, लेकिन रेखा की फिल्मी जोड़ियां रहीं जितेंद्र, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ। पर उनकी जो सबसे सफल जोड़ी बनी वो थी अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, दो अनजाने, मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, सुहाग, राम बलराम और खून पसीना।

रेखा की फिल्में तो हिट रही ही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के गाने भी एक से बढ़कर एक रहे हैं। और ऐसी शानदार अदाकारा के विषय में बातें करने के लिए ये समय हमें बहुत कम सा लगता है।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

सभी को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज इस मोड़ पर वो बहुत याद आते हैं। कभी कभी जिंदगी में उजाले तो बहुत होते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक अंधेरा ठहर जाता है। वो अंधेरा जो किसी की याद से रोशन भी होता है और उसी याद में हमें तन्हा भी कर देता है। वो सामने नहीं होते, फिर भी हर ख्याल में उनका चेहरा नजर आता है। उनकी खामोशी तक जैसे हमसे कोई गुफ्तगू करती है।

मोहब्बत में वफा निभाना तो हमने सीखा, मगर जफा करना ना आया। किसी की खातिर दिल को तड़पाना, किसी की आंखों में अश्क लाना हमारी फितरत नहीं। इश्क में शिकवे भी मिले, फासले भी आए, मगर दिल ने हर बार उसी शख्स की खैरियत

दास्तान कह जाए। वो मेरी मोहब्बत बनकर मेरी रूह में समाती गई। उसकी एक झलक को तरसती निगाहें, उसकी एक आवाज पे ठहरती धड़कने। ये कैसी आरजू है, ये कैसी कैफियत है कि उसका नाम आते ही दिल को जैसे इबादत का एहसास होने लगा।

अंतराल के बाद इस दीवाने की महफिल में हम और आप साथ साथ छाया गीत के सफर में। उसकी मोहब्बत क्या रंग लाई, उसे देखने की आरजू, उसे चाहने में खुशी, उसके साथ में जैसे पूरी कायनात मिल गई। उसे देखा तो लगा बहारों ने कोई ख्वाब देखा है, जैसे गुलिस्ता में अचानक किसी गुल ने मुस्कुराकर अपनी खुशबू बिखेरी।

इश्क में आशिक की बेचैनी यही तो होती है, महबूब नजर से ओझल हो जाए तो दिल उसे हर गली, हर राह, हर फिजा में तलाश करने लगता है। यही तो मैंने भी किया, कभी हवाओं से, कभी घटाओं से, तो कभी चांद से पूछता, क्या तुमने उसे देखा है। नजर उसकी तलाश में भटकती रही और जब महबूब को एक नजर देख लिया तो मत पूछिए दिल कहाँ।

महबूब से मिलने की खुशी कभी अपना एक आलम है, लबों पर खामोशी, आंखों में ख्वाब और दिल में बेपनाह मोहब्बत, बस एक दीदार की चाहत में।

दीवाने की दीवानगी में कहीं हम खो न जाएं, छाए गीत के सफर में क्या आप हुए? ये सवाल एक जवाब के इंतजार में यही छोड़ जाते हैं। स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: ساتھ میں آشوتوش مشر۔ विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता